एफएमवेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून 2026। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

FM वेव 103.1 MHz पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। तो आइए सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। तो आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: जो गुणीजन समाज की रक्षा करना चाहते हैं, वे सबसे पहले नारी की रक्षा का फैसला लेते हैं। तब अनुभव होता है कि नारी की रक्षा ही समाज की रक्षा है। नारी अपने स्वभाव और चर्या से एक मजबूत समाज की सृजना करती है, तो पुरुष समाज का अर्थतंत्र मजबूत करता है। ध्यान रहे, समाज को बिगाड़ने या विकृत करने वालों में पहला कदम पुरुषों का होता है, नारी का क्रम बाद में आता है। तब लगा कि किसी समाज की रक्षा में पहला कदम नारी का होता है। वो माँ, बहन, पति और पुत्री के रूप में आदमी को प्रेरणा देती रही है और उसी की फलश्रुति पुरुष के कारनामों से प्राप्त होती रही है। आज की बेटी कल की माँ है, अतः जब हम बेटी को स्वस्थ रखेंगे तब ही हम उसे निरोग माँ के रूप में पा सकेंगे। एक निरोग और प्रसन्न माँ ही स्वस्थ समाज की रचना करती है। अतः नारी के स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रारंभ से ही विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे कभी भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। हम सैकड़ों वर्षों से सुनते आए हैं, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। तो पूजा के नाम पर कीमती चढ़ावा नहीं चढ़ाना है, बस उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन का ध्यान रखना है। पिता, पति, पुत्र और भाई के रूप में पुरुष को केवल इतना ही करना है। नारी की रक्षा भी इसी में है। जो पुरुष नारी को शब्द अशब्द से भेदते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, वे

0: मन का ध्यान रखना है। पिता, पति, पुत्र और भाई के रूप में पुरुष को केवल इतना ही करना है। नारी की रक्षा भी इसी में है। जो पुरुष नारी को शब्द अशब्द से भेदते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, वे नारी समाज के खल पात्र हैं। तर्क वितर्क और व्यंग बाण उनके आयुध होते हैं। वे नारियों को समय समय पर भेदते रहते हैं। ऐसे मनुष्य कभी स्वस्थ नारी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वे तो निरोग को भी रोगी बना डालते हैं। या कहें, समाज में सभी प्रकार के लोग होते हैं। एक पृथक बात यह है कि वे नारी से ही सद पथ की प्रेरणा पाते हैं। ध्यान रहे, सद प्रेरणा पाने में इतना विलंब न हो जाए कि प्रेरणा प्रदान करने वाली मूर्ति की सांसें ही थम जाएं। जो ज्ञानवान पिता अपनी लाडली पुत्री को सुसंस्कार समय रहते प्रदान कर देते हैं, वे संस्कारित बेटियां ही आगे जाकर संस्कार संपन्न समाज की रचना करती हैं। असल मायने में वे ही समाज की पालक और संरक्षक सिद्ध होती हैं। देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में नारियां बचपन से ही कला प्रिय होती हैं, अतः उन्हें अधिक से अधिक ललित कलाओं की शिक्षा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि कलाहीन नारी शीघ्र ही कलह प्रिय नारी बन जाती है। समाज को संवारने में नारी को अकेला न छोड़ा जाए, पुरुष भी उसके बराबर श्रम करे, तभी समाज और देश की सर्वांग उन्नति हो सकती है। समाज में पद रही कुरीतियों पर जब कोई नारी अंकुश लगाने का साहस दिखाए तो पुरुष मौन न रहे, वो बढ़कर उसे सहयोग दे और उसे सफलता तक पहुंचाए। नारी को सहयोग करना नारी की सबसे बड़ी रक्षा है, जो पुरुष से वांछित है। हाँ, पल पल वांछित है। सहयोग कर देने के बाद भूल से भी नारी को हीन न माने, वो शक्ति का पुंज होती है। पाश्चात्य विचारक श्री बोवी ने कहा है कि ईश्वर के पश्चात हम सर्वाधिक ऋणी नारी के हैं। प्रथम तो जीवन के लिए, पुनश्च इसको जीने योग्य बनाने।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम चिंतन FM वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:35 हुए हैं। तो आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान सुरेश वाडकर और रविंद्र साठी के स्वर में।

अंगद के व्यंग्य वचन सुनकर रावण श्री राम की सेना के सभी योद्धाओं के बल और पराक्रम का उपहास करता है। हाँ, उस वानर को वो नहीं भूला जिसने लंका जलाई थी। अंगद ने कहा, तू जिसके बल की सराहना कर रहा है वो तो सुग्रीव का संदेशवाहक मात्र था, किंतु क्या सचमुच ही प्रभु की आज्ञा पाए बिना तुम्हारी सोने की लंका जला डाली? तुम सच ही कहते हो कि हमारे दल में कोई भी ऐसा वीर नहीं तुमसे लड़कर जो शोभा पाए। प्रीति और वैर अपने बराबर वाले से ही करना चाहिए। तुम्हें मारना श्रीराम को शोभा नहीं देता, किंतु क्षत्रिय का क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद के व्यंग्यवाणों से रावण का कलेजा जल उठा। क्रोध में उसने वानर जाति के लिए अपशब्द कहे, उनकी स्वामी भक्ति की खिल्ली उड़ाई और ये कहकर अपने बड़प्पन का परिचय दिया कि वो गुण ग्राहक है और इसी कारण वानरों की बकवास पर ध्यान नहीं देता। अंगद ने फिर व्यंग्यवाण छोड़ा, हां, तेरी गुण ग्राहकता मैंने हनुमान से सुनी थी। लंका दहन, अशोक वाटिका का विध्वंस और अपने पुत्र अक्षय कुमार के वध करने के बाद भी तूने इसी गुण ग्राहकता के कारण हनुमान का कोई अहित नहीं किया। फिर अपने पिता बाली के हाथों रावण को क्षमादान का स्मरण कर बोले, मैंने जगत में कई रावण होने की बात सुनी है,

एक रावण तो वो था जो जब बाली को जीतने पाताल लोक गया तो बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बाली ने दया कर उसे मुक्त कराया। एक और रावण को जंतु समझ सहस्रबाहु ने पकड़ लिया था। कौतुक के लिए जब उसे घर ले आए तो पुलस्त्य ऋषि ने उसे मुक्त कराया। एक रावण वो भी था जिसे बाली ने अपनी कांख में दबा लिया था। इनमें से तू कौन सा रावण है?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान सुरेश वाडकर और रविंद्र साठी के स्वर में। एफएम वेव 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। लोक रंजनी कलाकार हैं बसंत कवड़े और साथी।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंगनी। कलाकार हैं बसंत कावड़े और साथी।
1: डंगोडा की साके जारो भैया।

श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मनु प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनिन से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे

0: राज्यों और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। सुबह 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। 7:50 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम सुबह सवेरे में कुछ जनउपयोगी सूचनाएं और जानकारियां। सुबह 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मनप्रसाद करेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही सुनिए मॉर्निंग न्यूज। सुबह 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9:00 से 10:00 तक वेद भारती मुंबई से मनप्रसाद करेंगे वेद भारती सेवा के कार्यक्रम। 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिए कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। श्रोताओं, 10:05 पर हमारे स्टूडियो सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत। 10:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए महिलाओं का अपना पसंदीदा लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा नशा मुक्ति अभियान और परिवार पर प्रभाव। साथ ही सुनिए सखियों की पसंद के गीत और व्यंजन विधि में जानिए मसाला कॉर्न स्टार्च एवं गरम सूप की विधि। श्रोताओं, सुबह 11:00 से 2:10 तक वेद भारती मुंबई से हम प्रसारित करेंगे वेद भारती सेवा के कार्यक्रम। 2:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मन प्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। 2:30 पर वेद भारती मुंबई से मन प्रसारित करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए युवाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा नशा मुक्ति युवा सशक्त समाज का आधार।

है लोक रंग में कर्मा नृत्य के महत्व को जानिए, साथ ही हम आपको सुनाएंगे फिल्मी गीत। श्रोताओं शाम 6:05 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम गौधुली में सुनिए लता मंगेशकर के गाए हुए भक्ति गीत। शाम 6:30 पर हमारे स्टूडियो सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 6:50 पर हमारे स्टूडियो सुनिए कार्यक्रम सब रस में गजल भजन कव्वाली और गैर फिल्मी गीत। शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से मनप्रसारित करेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:20 पर हमारे स्टूडियो सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा मोहर्रम सादगी और त्याग का पर्व। सामयिक कृषि चर्चा में जानिए बतख पालन भी एक सहायक व्यवसाय है। सुनिए लोकगीत और श्रृंखला बातें खेती किसानी की और जानिए मौसम व बाजार भाव। श्रोताओं रात्रि 8 हमारे स्टूडियो से आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 8:30 पर हमारे स्टूडियो सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम साज और आवाज। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात्रि 9 से 10 तक विविध भारती मुंबई से हम प्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10 हमारे स्टूडियो सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए बांसुरी वादन उस्ताद अजील जुल इस्लाम राग श्री। रात 11 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से मन प्रसारित करेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से सुनिए अंग्रेजी में समाचार और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की प्रसारण सभा की समापन की उद्घोषणा होगी। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: non hai integrato il farmaco.
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा

0: कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सके कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो, आधी शताब्दी बीत गई है, पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय देश पर हुआ, जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए, और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष यह काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जल नायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था की केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सके। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मिसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न 200 रूपये का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें

0: इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि
1: आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक एक चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे चार फूट, मतलब खेत में चार फूट पर चार चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन तुल गए धान तो धन धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोधी नहीं हुआ, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक तरह अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये दिया क्या, फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में आकर मूंगफली लगा रहे हैं, हमारे यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा, इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूँ मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट, एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है बना, उसको जरूर देखना आप। चार पांच चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे चार चीज।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की आधार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगर मालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठ जनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारी ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल सम्पन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के मेहदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दो बदन का ये गाना।

श्रोताओं, अगला गीत सुनिए। फिल्म है एक महल हो सपनों का। आवाज लता मंगेशकर की।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। तो आइए सुनते हैं अगला गीत, और फिल्म का नाम है गीत। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। इस गीत में अपनी आवाज दी है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने।
1: आ तेरे

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। तो आइए सुनते हैं फिल्म हंसते जख्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम यादों के झरोके से का आखिरी गीत सुनिए। फिल्म है कश्मीर की कली।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से अब संपन्न होता है। FM वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम आप तक पहुंचाते हैं कुछ जनउपयोगी जानकारी और सूचनाएं। तो श्रोताओं, हमारी आज की जानकारी सबसे पहले और इसके अलावा सूचनाएं, तो हम आपको सूचनाएं पहुंचाएंगे कुछ जिले की, कुछ प्रदेश की, और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे आपके स्वास्थ्य की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 1,64,874 बच्चों को दी जाएगी पोलियो की खुराक। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 28 जून रविवार को आयोजित किया जाएगा। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बैतूल ने बताया कि प्रथम दिवस बूथ पर और दूसरे व तीसरे दिन 29-30 जून को घर घर जाकर 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। जिले में 0 से 5 वर्ष तक के अनुमानित 1,64,874 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में 226 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1,683 कुल 1,909 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन, जिले के क्रॉसिंग पॉइंटों में 88 बूथ बनाकर दवाई पिलाई जाएगी। साथ ही जिले में हाई रिस्क एरिया, ईंट भट्टे, निर्माण स्थल, मेले, झुग्गी झोपड़ी, घुमक्कड़ आबादी स्थल को भी चिन्हित कर 21 मोबाइल टीमों के द्वारा पोलियो की दवा पिलाने का कार्य किया जाएगा। दवा पिलाने के लिए 4,036 टीकाकर्मी एवं सुपरविजन के लिए 357 सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि पल्स पोलियो की दवा पीने से कोई भी 0 से 5 वर्ष तक के वंचित बच्चे वंचित न रहें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जांच, 222 हाई रिस्क मिली। गर्भावस्था से संबंधित जटिलताओं का पता लगाने और समय रहते उसको उपचार सुनिश्चित कर सुरक्षित प्रसव कराने के प्रति माह 9 एवं 25 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। प्रभारी मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल ने बताया कि जिले में 25 जून को आयोजित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविर में 508 गर्भवती महिलाओं की जांच एवं 222 हाई रिस्क चिन्हित तथा 50 सोनोग्राफी की गई। शिविर में सभी महिलाओं के खून की जांच एवं जीडीएम की जांच की गई। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के शिक्षकों का 23 जून से 25 जून 2026 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होटल आइसीन बैतूल में आयोजित किया गया था। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय स्कूलों में उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम किशोर बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण के उद्देश्य से संचालित है। किशोर बच्चों को उनकी समस्याओं की पहचान कराना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनका सर्वांगीण विकास करना कार्यक्रम का उद्देश्य है। प्रशिक्षण के माध्यम से जिले के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। शिक्षक अपने विद्यालय के किशोर बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास करने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य पूर्ण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिले के 45,150 पेंशन हितग्राहियों के खाते में अंतरित की 2,70,00,000 रुपए से अधिक की पेंशन राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं के प्रदेश के 33 लाख से अधिक हितग्राहियों के खाते में 203,56,00,000 रुपए की पेंशन राशि अंतरित की। उन्होंने बैतूल जिले के 45,150 पेंशन हितग्राहियों के खाते में 2,70,90,000 रुपए की राशि अंतरित की। कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्षे कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े, उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग रोशनी वर्मा, पेंशन हितग्राही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि अंतरण कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ये तो थी जन उपयोगी सूचना। अब आपको जानकारी देते हैं आपके स्वास्थ्य की। दोस्तों, आज के समय में ज्यादा लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान रहते हैं। यह स्थिति गलत खान पान, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी और वजन बढ़ने जैसी समस्याओं के कारण हो सकता है। इसके कारण हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में अक्सर लोगों को वजन कम करने और हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए बहुत से लोग कैलोरी डेफिसिट के तरीकों को अपनाते हैं। कैलोरी डेफिसिट में डाइट में कम कैलोरीज लेते हैं, इससे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए खर्च कर देते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कैलोरी डेफिसिट हाई कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है या नहीं। तो इस संबंध में हमने आधार लिया प्रतीक्षा कदम, चीफ डाइटिशियन कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल नवी मुंबई के इस लेख के माध्यम से। डाइटिशियन प्रतीक्षा कदम के अनुसार, हाँ, कैलोरी डेफिसिट को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में फायदेमंद हो सकता है। इससे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। डाइटिशियन बताती हैं कि ज्यादा वजन के कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ऐसे में सही तरीके से कैलोरी डेफिसिट को फॉलो करने से वजन को धीरे धीरे कम करने में मदद मिलती है, जिसमें शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और डाइग्लिसराइड्स के स्तर को बहुत कम करने में मदद मिल सकती है। इसी कारण से वजन कम करना कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने का एक जरूरी हिस्सा है। डॉक्टर प्रतीक्षा का कहना है कि एक्सपर्ट ज्यादा कैलोरी कम करने की सलाह नहीं देते, दिन में 300 से 500 कैलोरी कम करने की सलाह देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वजन कम करने के लिए कैलोरी डेफिसिट करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। कैलोरी की मात्रा ज्यादा कम करने से शरीर को ठीक से पोषण नहीं मिल पाता और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइटिशियन प्रतीक्षा कदम के अनुसार कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कैलोरीज का सेवन कम करने के साथ साथ ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को डाइट में शामिल करें। इसके अलावा अनहेल्दी फूड्स, जंक फूड, चीनी और ट्रांसफैट वाले फूड्स का सेवन करने से बचें। ऐसा करने से कैलोरी डेफिसिट की प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी होगी। इसके अलावा नियमित रूप से 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज जरूर करें। कैलोरी डेफिसिट हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने का एक असरदार तरीका हो सकता है। यह वजन कम करने, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। अगर इसे बैलेंस डाइट और नियमित एक्सरसाइज के साथ अपनाया जाए तो यह प्रक्रिया प्रभावी हो सकती है। ध्यान रहे, हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। आप अपने घर पर या कोई अन्य माध्यम से प्राप्त जानकारी से खुद इलाज करना शुरू ना कर लें। हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में डॉक्टर से जरूर मिलें। इसके अलावा कैलोरी डेफिसिट को सही तरीके से अपनाने के लिए किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। तो कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज बस इतना ही।
1: सुबह सवेरे
0: FM वेव 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मनोप्रसारित करेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राष्ट्रीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रूपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
7: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस कालरात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
3: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
8: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
9: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं। एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. More from our correspondent.
11: The Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation. The government has also decided to reduce the diversion of C3-C4 streams to LPG pool. During the West Asia crisis, the government had issued orders under the Essential Commodities Act requiring C3-C4 streams to be utilized exclusively for LPG production, diverting them from petrochemical and other downstream uses to augment domestic LPG production. The enhanced allocation of C3-C4 streams for non-LPG uses will be implemented while ensuring that the domestic LPG availability remains unaffected and aggregate indigenous LPG production is maintained at not less than 40 TMT per day. The government has directed oil marketing companies to continue maintaining comprehensive data on commercial and industrial LPG consumers to facilitate efficient planning and supply management. It has reiterated its commitment to expanding PNG connectivity. With Suparna, Nitika Gupta, Akashwani News, Delhi.
10: The government has hiked the fees for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The Passports Amendment Rules 2026 will come into force with effect from 1st of July. In a notification, the Ministry of External Affairs said that under the new fee structure, a fresh passport or reissue of passport under Tatkal will cost 5,000 rupees. The fee for 60-page ordinary passport or reissue will be 3,500 rupees and under Tatkal, this will attract 6,000 rupees. In case of an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 36 pages, a sum of 5,000 rupees will be charged. For an ordinary passport in lieu of lost or damaged passport containing 60 pages, the cost will be 6,000 rupees. The National Testing Agency, or NTA, has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update the bank details is the 30th of this month. The Ashura-e-Muharram is being observed with due reverence and solemnity in different parts of the country today. The day marks the martyrdom of Prophet Muhammad's grandson, Hazrat Imam Hussein, and his companions who laid down their lives for upholding truth, righteousness, and justice in Karbala. Tazia processions will be taken out on the occasion. The majlis or religious meetings highlighting the supreme sacrifice of Karbala martyrs are also being organized. Elaborate security arrangements have been made on the occasion. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. Uttar Pradesh government has taken strict action in the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra donation case, with the first FIR registered against 8 named accused and other unidentified persons. The FIR was filed following recommendations by the Special Investigation Team, SIT, constituted on the directions of the Chief Minister Yogi Adityanath. The case was registered at the Sri Ram Janmabhoomi Police Station based on the written complaint of trust member Krishna Mohan. The FIR names Avinash Shukla, Anukalp Mishra, Lavkush Mishra, Manish Kumar Yadav, Karunesh Pandey, Ram Shankar Mishra, Subhash Srivastav, and Sri Ram Shankar Yadav alias Tinu, along with other unidentified

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल, ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर की ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओ, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर

यादगार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि

0: स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में दोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है, और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी, यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।

0: Stefan! Happy birthday to you!
1: Happy birthday to you, Stefan! How are you?
2: Happy birthday, Stefan! Thank you, Thomas.
3: Congratulations!
2: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
0: Oh, fine!
2: Thanks for coming in. Please come in.
1: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
0: Come, hey!
1: Come.
0: John, please come here!
1: Oh, sure.
2: Join us for a drink, please.
4: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
5: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: अभी मैं जीना चाहता हूँ, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा

0: और शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
1: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
2: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई, जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए, सुनिए।
5: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली।

0: when they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
2: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
2: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
3: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
3: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
4: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
5: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस फहरी नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
1: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
2: आग का गोला?
1: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
3: सूरज।
1: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
4: बहुत आसान पूछते हो।
1: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
4: अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
3: हाँ।
1: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
4: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
5: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
6: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही, एकदम
5: वो
1: सही।
5: हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
4: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
4: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत
5: अच्छे। अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
4: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
4: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
4: हाँ।
6: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
4: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
4: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
5: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
5: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
4: वैसे वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
5: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
4: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
4: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
5: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
3: सर्दी।
1: ओ ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
4: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता है।
3: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।

0: लगे ये चलता जाता है,
1: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: मैं जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ।
2: वो भी
0: दस पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। मुझे डर जाती
2: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? टेन से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब से कुछ ही देर में विविध भारती मुंबई से मनु प्रसारित करेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।
5: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग कर रहा था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों।

इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था, आज के दिन नशा मुक्ति के लिए। और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल है, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

0: झट के रहता मैं आया है राजा
1: लो गोरे लो गो
0: राजा के संग संग
1: झूम लो
0: आया है राजा
1: लो गोरे लो गो
0: राजा के संग संग
1: झूम लो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

0: था।
1: इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था, मदुरई तमिलनाडु में। एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजेंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हसन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड।

अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्मफेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फेहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि ये हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: की चिट्ठी आलेख है अमित द्विवेदी का, वाचन स्वर है शरद बाघेला के।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी, आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर शरद बाघेला। बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिला जुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी SDM को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहां BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का शिकार हुए शांतिनगर बैणन निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नव नियुक्त आरक्षकों को SP शियाज के M ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार SP द्वारा 2 चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे।

0: स्वास्थ्य क्षेत्र में एनटीपीसी विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब सुनाई थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेखा मितुवेदिका और वाचन स्वर थे शरद बाघेला की। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। देरी प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी बाती आपके गीत। और फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी श्रोताओं को आकाश श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए वे नगमे जिनके लिए आपने लिख भेजी हम अपनी प्यार भरी बाती। और आपकी इस फरमाइश को हम हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी बाती आपके गीत में शामिल करेंगे और पहुंचाएंगे हमारे स्टूडियो से आपके रेडियो सेट तक आपके और आपके परिवार और आपके दोस्तों के पसंद के नगमे। तो चलिए कार्यक्रम की सबसे पहली फरमाइश हम लेते हैं। ये फरमाइश आई है आमला ग्राम अधारिया से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं वीरेश झाड़े, योगेश झाड़े, चित्रेश झाड़े, नवनीत और उनके बहुत सारे दोस्त। आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दीदारे यार के इस गीत के लिए। और इसी गीत को सुनना चाहे छिंदवाड़ा नेहरग्राम देवरदा से बलराम वर्मा, देव वर्मा, जानवी रामा एवं समस्त वर्मा परिवार, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव। आप सभी की फरमाइश पर आप ही की रेडियो सेट पर फिल्म दीदारे यार का ये गीत आपके ही आसपास सुनिए।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तो हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: अगली फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा एवं उनके परिवार के सभी सदस्य। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल शीला गायत्री धनजे एवं समस्त धनजे परिवार। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी महिमा, नीतू वैद एवं समस्त वैद परिवार।

आप सभी ने फरमाइश भेजी है हमें फिल्म महबूब की मेहंदी के इस गीत के लिए, और इस गीत को सुनना चाहे बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल, अर्जुन गवनेकर, धीरज सव्वा सेरे एवं उनके बहुत सारे साथी। तो लीजिए, आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गाना।

करने लगा। रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो हम सफर आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, यदि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने अभी तक अपनी फरमाइश हम तक नहीं पहुंचाई है और आप चाहते हैं कि आपकी फरमाइश हम तक पहुंचे और हम आपकी फरमाइश को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। पर आप अपनी फरमाइश हम तक कैसे पहुंचाएंगे, तो हमारे तक फरमाइश पहुंचाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप पोस्ट कार्ड पर अपनी फरमाइश लिखकर हम तक पहुंचा दें। यदि आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम तक फरमाइश पहुंचाते हैं तो हमारा पता कृपया लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बैतूल, और पिन है 460001। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक फरमाइश पहुंचा सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर लिख लें 7141234722। नंबर एक बार लिखें, फिर से लिखें 7141234722। तो आप ये दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से हम तक फरमाइश पहुंचा सकते हैं। और आप जो फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं तो उसमें आपका नाम, आपके परिवार के उन सदस्यों का नाम जिन्होंने आपकी भेजी फरमाइश को पसंद किया है, या आपके दोस्तों पड़ोसियों या रिश्तेदारों के नाम भी आप भेज सकते हैं जो इस फरमाइश को पसंद कर रहे हैं, और आपकी इस फरमाइश को हमारे इस कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी फरमाइश का। और आप फरमाइश को भेजने के साथ साथ ये लिखना ना भूलें कि आकाशवाणी बैतूल द्वारा प्रसारित और दूसरे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं। इसके अलावा रोजाना रात्रि 10 बजे भी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आता है, तो आप इसी तरीके से उन कार्यक्रम में भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम के ठीक बाद 10:30 पर कार्यक्रम महिला जगत भी आता है, इसमें भी सखियों की पसंद नाम से आपको फरमाइशी गीत सुनाए जाते हैं, तो आप इसमें भी अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। तो चलिए फरमाइशों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अगली फरमाइश लेते हैं। फरमाइश आई है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। फरमाइश करने वाले श्रोता है अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश एवं समस्त गवाड़कर परिवार, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन एवं उनके परिवार के सभी सदस्य, आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी है फिल्म मेरे हुजूर के इस गीत के लिए।

श्रोताओं, अगली फरमाइश आई है फिल्म मासूम के इस गीत के लिए। इसे सुनना चाहे छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, झाविंद कुमार वर्मा एवं समस्त वर्मा परिवार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश एवं समस्त ठाकुर परिवार। तो लीजिए, आप ही की फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं आपको फिल्म मासूम का ये गाना।

श्रोताओं, फिल्म मासूम के इस फरमाइशी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके गीत अब संपन्न होता है। तो आकाश श्रीवास्तव को दीजिए विदा अगली मुलाकात के वादे के साथ। नमस्कार। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। तो लीजिए प्रस्तुत है महिलाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत।

श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत में। आज के इस महिला जगत कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी कांचन। तो चलिए करते हैं बात हमारे आज के इस प्रोग्राम पर, जिसमें हम आपको बतलाएंगे व्यंजन विधि, जिसके लिए करना होगा आपको कुछ पलों का इंतजार कि आज की व्यंजन विधि में हम आपको क्या बताने वाले हैं। साथ ही है श्रृंखला सखियों की पसंद, जिसमें आपकी पसंद के गीतों को आप तक पहुंचाया जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं हमारी आज की बात के विषय पर, जो है नशा मुक्ति अभियान और परिवार पर प्रभाव। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। नशीली चीजों और पदार्थों के निवारण के लिए प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को नशे की बुरी आदत से छुटकारा दिलाना और उन्हें नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाना है। परिवार के एक व्यक्ति का नशा पूरे परिवार को सजा। तो चलिए फिर सब मिलकर कहें इसको ना। नशा मुक्ति अभियान में सरकार, समाज और परिवार मिलकर नशे की लत को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इस अभियान का मकसद शराब, गुटखा, तंबाकू और जितनी भी नशीली दवाइयां हैं, इस तरह के किसी भी लत से इंसान को बचाना है। जब परिवार में कोई इस तरह के नशे का शिकार हो जाता है, तो परिवार के सभी मेंबर उसे सही और गलत क्या है ये उसे जरूर समझाएं, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं, ऐसे लोगों से उसे दूर रखें जिनके साथ वो गलत संगत में पड़ रहा है, क्योंकि नशा मुक्ति आज हमारे समाज के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी समस्या है। मादक पदार्थों का सेवन न केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को तबाह करता है, साथ ही ये पूरे परिवार और पूरे समाज के लिए भी गंभीर परिणाम लाता है। श्रोताओं, नशे की लत व्यक्ति को खुद से, परिवार से, समाज से दूर कर देती है और उसे विनाश की ओर ले जाती है। ऐसे में नशा मुक्ति की आवश्यकता बहुत ही जरूरी हो जाती है। नशा करने से शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत सारे गंभीर और खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं। ये हृदय, फेफड़ों और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। मानसिक रूप से व्यक्ति अवसाद, चिंता और गुस्से का शिकार हो जाता है। पारिवारिक संबंध भी बिगड़ जाते हैं और समाज में जो इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा है वो भी खत्म हो जाती है, और साथ ही सबसे बड़ी बात आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। नशा करने वाले व्यक्ति की वजह से परिवार तो परेशान रहता ही है, साथ वो खुद में नशे की वजह से कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अपने आप को वहीं पर वो बेबस समझते हैं। कई बार जब उन्हें नशे की चीजें नहीं मिलती हैं, तो वे अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। अक्सर लोग तनाव, चिंता या फिर किसी परेशानी से भी छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि नशा करने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नशा कमियों को छुपाने का एक तरीका मात्र है, इससे किसी का भी दुख दर्द कम नहीं होता है, ये तो धीरे धीरे व्यक्ति को ही खत्म कर देता है। तो श्रोताओं, इस लत को छोड़ने के लिए सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास लाना होगा। जबरदस्ती इसे नहीं छोड़ा जा सकता। नशा दीमक है, दिखता नहीं है, पर पूरा घर खोखला कर देता है। तो हमें उम्मीद है कि आप इस नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और नशे से दूर रहेंगी। ये थी हमारी आपके साथ बातें आज की बात के विषय पर। और अब शामिल करते हैं हमारी श्रृंखला सखियों की पसंद का ये व्हाट्सएप मैसेज, जो हमें मिला है कालापाठा बैतूल से। लिखने वाली सखियां हैं पल्लवी, सुषमा, हार्दिक, ईशांक, किरण, नव्या, वीना, जीनल, सोनू, मोनू, पल्लवी।

रिया और काव्या, ये सभी लिखते हैं कि आपका ये महिला जगत कार्यक्रम जिसमें श्रृंखला सखियों की पसंद में हमारी नाम सुनने के लिए हमारी पसंद के गीतों को सुनना हमें मिलता है, तो ये हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी फरमाइश को जरूर सुनवाएं। तो चलिए आप सबकी फरमाइश को हम सुनवा रहे हैं और साथ ही धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजी और आपके नाम को आप तक हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, अगली फरमाइश भी आप जरूर भेजिएगा हमें। तो चलिए आप सबकी पसंद को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं चिच्चोर फिल्म का ये गीत यशुदास की आवाज में।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे आप पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तो हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो।
4: क्यों बोल रहे हो?
5: सिखियो, अगली फरमाइश हम तक पहुंची है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। लिखने वाली हमारी सखियां हैं अंबेडकर वार्ड बैतूल से निशा, माधुरी, नवनीत, गर्वित, नवांश, निशित और पूरी टेकाम फैमिली। इन्होंने लिख भेजा है कि आपका महिला जगत कार्यक्रम जो सोमवार से शनिवार तक होता है हमें बेहद पसंद है और हमारी फरमाइश को आप पूरा करते हैं, इसके लिए आप सभी दीदियों को धन्यवाद। तो धन्यवाद हम आपको देते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश लिखकर भेजते हैं। तो आगे भी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि अगली पसंद एक नई फिल्म नए गाने के साथ होगी और हमारे इस कार्यक्रम शुक्रवार के दिन जो होगा उसमें ज़रूर हम इस फरमाइश को शामिल करेंगे। तो चलिए आप सब की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आपको लोफर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज में।

सिक्यू आज है श्रृंखला सिक्यू की पसंद, जिसमें आप अपनी पसंद के गीतों को सुन रहे हैं। आपकी अगली फरमाइश भी हम जरूर पूरा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

सखियों, गीत संगीत तो चलता ही रहेगा, अब समय है व्यंजन विधि का। तो चलिए आपको बताते हैं आज की व्यंजन विधि में मसाला कॉर्न चाट। इसके लिए जो सामान लगेगा, जो सामग्री लगेगी, उसे पहले आप नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। घी 1 चम्मच, 2 कप स्वीट कॉर्न उबाले हुए, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, टमाटर 1 बारीक कटा, हरी मिर्च 3 से 4 वो भी बारीक कटी हुई, नींबू 1, और मसाले में जो हमें लगेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार, साथ ही 1 चुटकी काला नमक, साथ में 2 चम्मच बारीक सेव, 1 चम्मच भुने मूंगफली दाना। सामान जब इकट्ठा हो जाए तो इसे बनाने का तरीका भी सुन लीजिए और फिर बनाइए। बनाने का तरीका है, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालकर उसे गर्म करें, फिर उसमें उबले हुए कॉर्न जो हमने रखे हुए हैं उसे डालकर 2 मिनट, आंच तेज भी नहीं होनी चाहिए और बहुत धीमी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच पर इसे भूने। फिर इस गर्म कॉर्न में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक डालें जो हमने बारीक काट कर रखे हैं, और साथ ही गैस को बंद कर दें। अब इसमें चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, और कम खाते हैं तो उसमें कम लाल मिर्च पाउडर डालें, साथ ही काला नमक और स्वाद के अनुसार नमक मिलाएं, और उसके बाद इसमें नींबू का रस भी मिलाएं। अच्छी तरह जब ये मिक्स हो जाए फिर ऊपर से इसमें हरा धनिया, मूंगफली के दाने और बारीक सेव से सजा कर सर्व करें। सखियों, एक चीज जरूर ध्यान रखें कि इसे आप गर्मा गर्म खाएंगे तो स्वाद 2 गुना हो जाएगा, कॉर्न चाट ठंडा खाएंगे तो स्वाद में मजा नहीं आएगा। तो फिर बनाइए जल्दी से मसाला कॉर्न चाट और सुने अपनी फरमाइश का ये गीत, जो अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है भैंसदाई से प्रशांत देशपांडे, सारिका देशपांडे ने, साथ ही बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज संवासेरे ने। आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं आपको फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में।

देखियो, आप ये प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं आपकी पसंद की, क्योंकि आपने फरमाइश हम तक लिख भेजी है। देखियो, आप भी जो अपना नाम नहीं सुन पाए हैं या फरमाइश नहीं भेज पाए हैं, वो इस पते पर अपनी फरमाइश लिखकर हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, श्रृंखला सखियों की पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बैतूल, और पिन कोड है 4600001। साथ ही व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपकी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं, जिसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141 234 722। नंबर एक बार फिर 7141 234 722। इस नंबर पर आप मंगलवार और शुक्रवार के लिए श्रृंखला सखियों की पसंद में अपनी फरमाइश हम तक लिखकर भेज सकते हैं। और अब अगली फरमाइश को लेते हैं, जो हमें मिली है नागपुर से। ये हमारी सखियां हमें लिखती हैं कि ये गीत जो हम आपको भेज

हैं वो तो हम सुनना चाहते ही हैं, पर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपका ये कार्यक्रम रोज सुनते हैं, हमें ये बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी पसंद का गीत सुनवाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो सखियो, हम आपको आपकी पसंद का गीत जरूर सुनवाएंगे, और हमें भी खुशी हुई है कि आपने अपने विचार और अपनी फरमाइश हम तक भेजी है, और ये फरमाइश लिख भेजी है हमें नागपुर से मुन्नी वैशाली, आरती, कविता, सोनू, प्रीति, नेहा, स्नेहल, वीणा, मोनू, रोशनी, पूनम, बबली, मृणाल, रोहित, रूपल और इनके सभी सखियों ने। तो चलिए, आप सबको देते हैं धन्यवाद और करते हैं आपकी फरमाइश को पूरा जो आपने लिख भेजा है फिल्म अपनापन से। तो चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म अपनापन का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

सखियों, इस गाने के तरह ही इस कार्यक्रम में भी नई नई सखियां आती और जाती रहती हैं। कल के इस कार्यक्रम में आपके साथ होगी हमारी सखी अलका पांडे, जो बात करेंगी लघु उद्योग एवं महिला स्वरोजगार पर। साथ ही मिलवाएंगी एक नए मेहमान से और देंगी बागवानी पर सुझाव। तो सुनना ना भूले कल का कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे अलका पांडे के साथ। और अब आज के कार्यक्रम से अपने रेडियो सखी कांचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का अपना पसंदीदा और लोकप्रिय कार्यक्रम महिला जगत एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। तो अब से कुछ ही देर में विद भारती मुंबई से मन प्रसारित करेंगे विद भारती सेवा के कार्यक्रम।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा, वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा, वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा, ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें है बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादुआ भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत के मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

संभाले जलते तवे पर, जलते तवे पर झुलस गया पानी।

0: चंदनदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: तरंग तरंग आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। वो उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रही हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

0: ना मेरा कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले घड़ी भर ये
1: शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोलते रेशमा की आवाज फिल्म का नाम था हीरो। अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी। इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमीन। ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए। दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। वही इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा गागरी पानी मन रंगीला बारिश हवा उड़ आसमान जमीन, ओहो हो 20 शब्द चुन लिए हैं, क्या बात है क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हाँ, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं, और जब छाते हैं बदरा आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और यह खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहाँ सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। वही कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की यह कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये है हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं, तो शुरू हो जाइए। किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था, ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चक्री जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती है कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं, मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था ना जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहाँ कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो सूरत गुजरात में है और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होठों पर आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है। आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है।

ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ, आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आरे बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना, लपक झपक तू आरे बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता है जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही है। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग-अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक

श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी, यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है, इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए। और इसके अलावा एक

पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं,

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती है, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कंफ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये है जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी। जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था जब मैं कोचिंग जा रहा था। रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं। लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये कहते हैं कि कहां गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगे उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सोंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगी। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी फैल गई।

1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थीं। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे।

0: भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियाँ, पर न हो विदेशियों को यहाँ स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, हैं फिर भी एक दूसरे के बंधु ही।

0: ऐ इंसान सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

0: तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलियानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विधयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा। वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम। वेदों
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में

संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसे और धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही है। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन चैन भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। आज मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बिहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की। और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बना

0: इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
4: For our business,
5: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
5: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
1: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा, युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: सुमती से बोल रही हैं, आइए सुनिए सदाबहार रंग में।
1: वो जब याद आ

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

सलामत सेहरा तुम्हें

सरी के डोले मनवा कि हियर में उठ तहिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आई।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था, अनजान के बोल थे, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके

0: 1978 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाते गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप उप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत

0: स्पेशल शंकु।
1: क्या बात है, शुक्रिया।
0: भाते की खास तौर पर
1: जी जी
0: और मैं आलों से आप समझ लीजिए बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा।
1: अच्छा जी, निशा जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
0: जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ।
1: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
0: जी हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
0: जी
1: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
0: जी
1: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
0: जी
1: हुई हैं?
0: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
1: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
0: जी
1: के
0: हाँ,
1: साथ खुशहाल हैं।
0: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
0: जी
1: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, मैं
0: पूनम जी क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: तो मतलब बस हाउस वाइफ में रहूंगी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो होती ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब से बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी, जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक प्रसाद फिल्म का गाना है, वो भी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला इंडिया ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी जी, बात जी। है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे गाने में आनंद मिलता है, रेडियो सुनती हूँ,
0: गाते भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ, बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
0: जी, और गाते भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ।
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाऊं?
0: सुनाइए।
1: देवी जी के मंदिर में लट से बाहरी आई, देवी जी के मंदिर

0: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
1: जी जी
0: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: जी
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी, कोई
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: भी सुना दीजिए
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ, और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना है।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश

0: रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है। और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है, तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहाँ पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है आपको वहाँ जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
1: जी
0: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को
1: जी
0: बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें
1: जी
0: सीखने का मौका मिलता है। तो ये
1: जी
0: तो बहुत अच्छी बात है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो
1: जी
0: बताइए, रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ। तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, ये प्रार्थना गीत बहुत पसंद है, और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे
1: हाँ
0: मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए
1: जी
0: जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। तो सुनवाते हैं
1: हाँ
0: आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: तो
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जी,
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी

0: दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है, सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ
0: करती
1: जी,
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखिए जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर आप तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीर भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी ही खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो
1: जी
0: हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है। अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब
1: जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना, तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।
1: जी

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक

0: नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाए। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी संख्या के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली के प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहाँ तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहाँ कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते घेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सब

सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सोच नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

नहीं आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का मेरे हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमा मुद्दत से दिल उदा दादा दास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो।

दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा।

0: मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूँ विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

मैं यूं खामोशियों की ऊंट में खुद को छुपाइए, मेरी आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

हम जानते हैं वो दूर जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो
1: देखो दिल न तोड़ो
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं लौटने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं पे।

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए। एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

0: अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।
1: FM वेव 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। विषय खिदमत है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, सांझ की ये सुहानी बेला अपने अपने काम से घर लौटते कदम, हाथों में शाम की चाय की प्याली और कुछ सुकून भरे पल, ऐसे ही खुशनुमा माहौल में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय युवा कार्यक्रम युवाणी। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी मुस्कान ठाकुर और आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर दिन अपने साथ कुछ नए अनुभव, नई सीख और नई प्रेरणाएं लेके आता है। आज का युवाणी भी ऐसे ही विषयों से सजा है जो न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा बल्कि नई दिशा भी देगा। कार्यक्रम की शुरुआत होगी क्रमाज की बात से, जहां चर्चा का विषय है नशा मुक्त युवा देश व समाज का आधार है। इसके बाद क्रम इनसे मिलिए में होगी भेंटवार्ता कृषक धन सिंह सिसोदिया से, जिनसे जानेंगे हम कृषि क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर के बारे में। वही क्रम लोक रंग में जानेंगे हमारी समृद्ध लोक संस्कृति की पहचान कर्मा नृत्य के बारे में, और इन सब के बीच आपका मनोरंजन करेंगे मधुर और मनभावन फिल्मी गीत। तो श्रोताओं, ज्ञान, प्रेरणा, संस्कृति और संगीत से सजी इस सुंदर यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। आइए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट आज की बात की ओर। दोस्तों, आज 26 जून है। आपको बता दूं, हर वर्ष 26 जून को पूरे विश्व में विश्व मादक द्रव्य निषेध एवं अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज को मनाने का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है और एक स्वस्थ, सुरक्षित तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया ये अभियान हमें ये संदेश देता है कि नशे की समस्या केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका प्रभाव पूरे परिवार, समाज और देश पे पड़ता है। दोस्तों, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। युवाओं के सपनों, ऊर्जा, प्रतिभा और मेहनत से ही देश का वर्तमान और भविष्य आकार लेता है। लेकिन जब यही युवा नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, वो उनकी क्षमताएं धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। नशा शुरुआत में भले ही कुछ लोगों को आकर्षण या तनाव से राहत का माध्यम लगे, लेकिन धीरे धीरे ये व्यक्ति के शरीर, मन और जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। एक बार इसकी लत लग जाने पर इससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। नशे का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में रुचि कम होने लगती है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटकने लगता है। जो युवा अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकता था, वह धीरे धीरे निराशा, कमजोरी और असफलता के चक्र में फंस जाता है। इसके साथ ही नशा अनेक गंभीर बीमारियों को भी जन्म देता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। श्रोताओं, नशे का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। परिवार के सदस्य मानसिक तनाव झेलते हैं, रिश्तों में दूरियां आने लगती है और घर का वातावरण प्रभावित होता है। कई बार नशे की वजह से आर्थिक समस्याएं भी बढ़ जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति की बुरी आदत पूरे परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, यदि हम एक विकसित, जागरूक और प्रगतिशील समाज का सपना देखते हैं, तो उसके लिए नशा मुक्त युवा अत्यंत

आवश्यक है। जब युवा स्वस्थ होंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे और अपनी ऊर्जा को शिक्षा, कौशल, खेल, विज्ञान, कृषि, कला तथा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाएंगे, तभी समाज और देश सही अर्थों में आगे बढ़ पाएगा। नशा मुक्त युवा न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। श्रोताओं, आज के सोशल मीडिया ट्रेंड, साथियों के दबाव और गलत संगति के कारण युवा अनजाने में नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई बार इसे केवल एक शौक या फैशन समझ लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती है। इसीलिए आवश्यक है कि युवा सही मित्रों का चुनाव करे, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे और जीवन में सकारात्मक सोच ही अपनाए। जागरूकता और आत्मविश्वास ही नशे जैसी बुराइयों का सबसे प्रभावी उपाय है। वहीं दूसरी ओर, जब युवा अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, तो न केवल स्वयं को आगे बढ़ते हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए एक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त युवा वर्ग ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकता है। दोस्तों, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमें नशे को केवल एक व्यक्तिगत समस्या न मानकर इसे सामाजिक चुनौती के रूप में समझना होगा। माता पिता, शिक्षक, मित्र और समाज के सभी लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वे युवाओं को सही मार्गदर्शन दें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों से जोड़े। युवाओं को भी समझना होगा कि वास्तविक खुशी और सफलता किसी नशे में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने, स्वस्थ जीवन जीने और समाज के लिए कुछ अच्छा करने में है। आइए, इस विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस पर हम भी ये संकल्प लें कि स्वयं नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों से दूर रखेंगे। इसी सकारात्मक संदेश के साथ अब वक्त हो चला है एक मनभावन गीत का, तो लीजिए आनंद इस प्यारे से गीत का।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद अब बारी है त्रम इनसे मिलिए की, जिसमें आज हम भेंटवार्ता करेंगे धन सिंह सिसोदिया जी से कृषि क्षेत्र में युवाओं के अवसरों पर। तो धन सिंह जी, आपका कार्यक्रम युववाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुस्कान जी।
0: धन सिंह जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए।
1: जी, मेरा नाम धन सिंह सिसोदिया है। मैं कृषि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई वर्षों से किसानी कर रहा हूँ। आधुनिक समय में मैंने नई किसानी को अपनाया है, कृषि की उन्नत तकनीकों को अपनाने का प्रयास किया है, नई नई जानकारी सीखकर खेती को अधिक लाभदायक बनाने की कोशिश की है।
0: धन सिंह जी, हमारे युवा श्रोताओं को बताइए, आपको कृषि में आने की प्रेरणा कब से मिली?
1: पारिवारिक माहौल शुरू से यही था। पुरखे लोग खेती करते थे, गांव से जुड़े हुए होने के कारण खेती की ओर रुचि रही। फिर पढ़ाई करने के बाद खेती के की ओर अग्रसर हुए और समय के साथ नई नई जानकारियां प्राप्त कर खेती शुरू की।
0: जी धन सिंह जी, क्या आपने भी अपनी युवावस्था से ही कृषि की ओर ध्यान केंद्रित किया?
1: जी मैडम जी, शुरू में पढ़ाई करने के बाद मैंने कृषि के क्षेत्र में ही अपने भविष्य, अपने करियर को बनाने की शुरुआत की।
0: धन सिंह जी, आज तो इतनी तकनीक है जिससे कृषि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली हो गई है, लेकिन उस जमाने में तो कृषि नहीं थी इतनी ज्यादा डेवलप। फिर आपने कैसे सोचा कि ये मेरे लिए एक सेफ फ्यूचर है?
1: प्रारंभ में थोड़ा सा मन में शंका थी, लेकिन शुरू से ही

0: कृषि के क्षेत्र को करियर के रूप में अपनाने की कोशिश थी, इसलिए मैंने इसी क्षेत्र को चुना।
1: सिंह जी, आज के समय में कृषि के क्षेत्र में युवाओं के लिए क्या संभावनाएं हैं?
0: आज के समय में युवाओं के लिए कृषि में बहुत सारी संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर दुकानें, मशीनें, आजकल खेती मशीनों से हो रही है, नई नई तकनीकों से लैस है, तो आज के समय में कृषि क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं।
1: धन सिंह जी, क्या कृषि को आज भी पारंपरिक पेशा मानना सही होगा?
0: नई परंपरा से आगे निकल गई है कृषि, आधुनिकता कृषि में आ गई है। आधुनिक मशीनें, ड्रोन, मोबाइल एप्लीकेशन, वैज्ञानिक पद्धतियां इसे आधुनिक व्यवसाय का रूप दे रही हैं।
1: सिंह जी, युवाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी क्यों जरूरी है?
0: युवा लोग नई सोच, नई ऊर्जा, नई तकनीकों को अपनाने की क्षमता रखते हैं।
1: जी
0: उनकी भागीदारी से कृषि आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बन सकती है।
1: तकनीक ने कृषि क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है?
0: तकनीक के कारण खेती अधिक आसान और प्रभावी हुई है।
1: जी
0: किसान मौसम की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग कर सकता है और अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है।
1: जी धन सिंह जी, जैविक खेती को लेकर आपकी क्या राय है?
0: जैविक खेती स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है। इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, यह किसानों को बेहतर बाजार भी उपलब्ध करा सकती है।
1: जी धन सिंह जी, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ चुनौती होती है, तो कृषि क्षेत्र में क्या चुनौतियां रहती है?
0: मुस्कान जी, मौसम में बदलाव, उत्पादन लागत में वृद्धि
1: जी
0: और बाजार की अनिश्चितता प्रमुख चुनौतियां हैं, लेकिन सही जानकारी और योजना से इनका सामना किया जा सकता है।
1: सिंह जी, क्या कम भूमि वाला किसान भी सफल हो सकता है कृषि क्षेत्र में?
0: मुस्कान जी, बिल्कुल हो सकता है। कम भूमि पर सब्जी उत्पादन किया जा सकता है, फूलों की खेती की जा सकती है, मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है और अन्य गतिविधियों के माध्यम से अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है।
1: जी सिंह जी, कृषि क्षेत्र में शिक्षा का क्या महत्व है?
0: मुस्कान जी, शिक्षा किसानों को नई तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी देती है,
1: जी
0: जिससे उत्पादन और आय दोनों बढ़ते हैं।
1: धन सिंह जी, सरकारी योजनाएं युवाओं की कैसे मदद कर सकती है कृषि क्षेत्र में?
0: मुस्कान जी, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण, ऋण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिससे युवा अपने कृषि कार्य को बेहतर बना सकते हैं।
1: जी धन सिंह जी, जो हमारे ग्रामीण युवा है वो तो खेतों के बीच में ही पले बड़े होते हैं, लेकिन क्या शहरों के युवा भी कृषि क्षेत्र से जुड़ सकते हैं?
0: मुस्कान जी, शहरी युवा हाइड्रोपोनिक्स, टेरेस गार्डनिंग और एग्री बिजनेस जैसे क्षेत्रों के लिए कार्य कर सकते हैं।
1: धन सिंह जी, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जिसे आप विशेष मानते हो?
0: जब नई तकनीक अपनाने से उत्पादन बढ़ा और अन्य किसान भी उससे प्रेरित हुए, तब मुझे विशेष संतोष मिला। दूसरों को प्रेरित करना वास्तव में बड़ी उपलब्धि है।
1: धन सिंह जी, आपके हिसाब से आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?
0: मुस्कान जी, भविष्य में तकनीक आधारित खेती, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग बढ़ेगा।
1: धन सिंह जी, हमारे युवा श्रोताओं के लिए आपका संदेश या आपकी सलाह क्या होगी?
0: मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा कि कृषि को सम्मान अवसर के रूप में देखें। यह क्षेत्र आत्मनिर्भरता, रोजगार और देश के विकास में योगदान देने का बेहतरीन माध्यम है। यदि युवा नई सोच और तकनीक के साथ आगे बढ़ेंगे तो कृषि का भविष्य और अधिक उज्जवल होगा।
1: धन सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे युवा श्रोताओं के साथ साझा किए, उम्मीद है ये उन्हें बहुत काम आएंगे।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस मंच युवा वाणी का, जिसके जरिए मैं अपने अनुभव युवाओं तक पहुंचा पाया।
1: तो दोस्तों, आप नई नई तकनीकों को अपना कर कृषि में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और अब बारी है एक प्यारे से गीत की।

प्यारे से गीत के बाद दोस्तों पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम युववाणी में। भारत अपनी विविध संस्कृति, लोक कलाओं और परंपराओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारे लोकगीत और लोक नृत्य न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक विरासत और लोक जीवन की पहचान भी है। इसी कड़ी में आज के लोक रंग में हम बात करेंगे करमा नृत्य की। दोस्तों करमा नृत्य मध्य भारत के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है, जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,

झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। यह नृत्य प्रकृति, श्रम, प्रेम, भाईचारे और सामूहिक जीवन की भावना का प्रतीक माना जाता है। कर्मा नृत्य का संबंध कर्मा देवता और कर्मा वृक्ष से माना जाता है, जिन्हें सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक मानते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अच्छी फसल, परिवार की खुशहाली और समाज की समृद्धि की कामना के लिए कर्मा पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गांव के लोग एकत्रित होकर कर्मा वृक्ष की पूजा भी करते हैं और पूरी श्रद्धा तथा उत्साह के साथ कर्मा नृत्य प्रस्तुत करते हैं। यह आयोजन केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक आनंद का भी प्रतीक होता है। दोस्तों, कर्म नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता इसकी लयात्मकता और सामूहिकता है। इस नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वे पारंपरिक वेशभूषा धारण कर ढोल, मांदर, टिमकी और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों की थाप पर गोलाकार या अर्ध गोलाकार रूप में नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान गाए जाने वाले कर्मा गीत प्रकृति, प्रेम, जीवन और लोक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे वाद्य यंत्रों की गति बढ़ती है, वैसे वैसे नर्तकों के कदम भी अधिक उत्साहपूर्ण हो जाते हैं, जिससे पूरा वातावरण उल्लास और उमंग से भर उठता है। श्रोताओं, आधुनिकता के इस दौर में भी कर्मा नृत्य अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक उत्सवों और राष्ट्रीय मंचों पर इसकी प्रस्तुतियां देखने को मिलती है। यह नृत्य न केवल आदिवासी संस्कृति की पहचान है बल्कि भारत की समृद्ध लोक विरासत का भी एक अनमोल हिस्सा है। कर्म नृत्य हमें यह संदेश देता है कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम भी अपनी लोक कलाओं और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करें तथा उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में योगदान दें। और जब बात चल रही हो नृत्य की, तो बिना संगीत तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लीजिए पेश है ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, शाम के 6 बजे हैं। समय है आपको आज के शेष और कल के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराने का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गोधुली, जिसमें कलाकार होगी लता मंगेशकर। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 6:30, 6:50 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सबरस। और 7:20 पर समय होगा कार्यक्रम ग्राम सभा का, जिसमें आज की बात का विषय होगा मुहर्रम, सादगी और त्याग का पर्व। साथ ही सामयिक कृषि चर्चा का विषय बतख पालन भी एक सहायक व्यवसाय है। इसी कार्यक्रम में होंगे कुछ लोकगीत, बाजार भाव और भेंट वार्ता। रात 8:00 संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आपके संदेश आपके गीत। 8:30 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम साज और आवाज। 10:00 कार्यक्रम आपके मीत ये गीत और 10:30 कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बांसुरी वादन, कलाकार होंगे उस्ताद अजीजुल इस्लाम। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सभा का समापन होगा 11:10 पर। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब नजर डालते हैं कल यानी शनिवार प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी सभा आरंभ होगी 5:53 पर। 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। 6:30 कार्यक्रम चिंतन और 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान। 6:45 पर कार्यक्रम लोक रंजनी आप सुनेंगे, कलाकार होंगे तिलक राज मेहरा और साथी। क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से आप तक पहुंचेगा 7:20 पर। 7:50 पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। 8:30 आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो एफएम बैतूल। 10:00 आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 10:05 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे और 10:30 होगा महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज की बात का विषय होगा लघु उद्योग एवं महिला स्वरोजगार, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज डे के उपलक्ष्य में। साथ ही श्रृंखला मुलाकात के अंतर्गत कल आप सुनेंगे महिला स्वरोजगार एवं SHG इस विषय पर स्व सहायता समूह की महिला इनसे बातचीत। साथ ही बागवानी पर सुझाव, विषय होगा किचन गार्डन में हरी सब्जियों की खेती के आसान उपाय। 5:30 होगा युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार के अवसर। साथ ही श्रृंखला अवसर में कल आप सुनेंगे प्रतियोगी परीक्षाएं, नए कोर्सेज, छात्रवृत्ति और रोजगार संबंधी कुछ सूचनाएं। श्रृंखला स्तंभ के अंतर्गत सेहत मंत्र आप सुनेंगे, विषय होगा तनाव एवं चिंता कम करने के तरीके। 6:05 पर कार्यक्रम लोक संगीत, 6:30 फिल्म संगीत और 6:50 पर कार्यक्रम सबरस। 7:20 पर कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे, जिसमें आज की बात का विषय होगा किसान वाणी गांव में। ये स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम होगा और ग्राम बोरी खुर्द आमला से इसकी रिकॉर्डिंग की जाई होगी। 8:00 कार्यक्रम बातें नई गीत नए और

10 बजे कार्यक्रम मन भावन, 10:30 बजे कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, ये थे आज की सभा के शेष और कल की सभा के मुख्य आकर्षण। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कलाकार है लता मंगेशकर।

0: आपके व्हाट्सएप संदेशों और गीतों पर केंद्रित फरमाइशी प्रोग्राम आपके संदेश आपके गीत सुनिए हर शुक्रवार रात 8 बजे से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722।
1: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। कार्यक्रम में आज की कलाकार है लता मंगेशकर।

0: कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को। हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
1: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
0: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

0: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
1: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
0: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
1: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाएं विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन भी।

0: हमारी विज्ञापन दरें हैं बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

0: हमारे संपर्क क्रमांक है 07141234722 और मोबाइल नंबर है 9755553676।
1: यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है और आपने ट्यून किया है भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम में आज की कलाकार है लता मंगेशकर।

इस मधुर भक्तिमय रचना के साथ ही कार्यक्रम गोधुली यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड का एक ऐसा प्यारा सा गीत जिसने अपनी मस्ती, अदाओं और शानदार संगीत के दर्शकों पर दिल पर राज कर दिया। आइए सुनते हैं लज्जा फिल्म का एक बेहद ही लोकप्रिय गीत, जिसे 2001 में प्रदर्शित किया गया था। निर्देशन किया था राजकुमार संतोषी ने। इस गीत को अपनी सुरीली और चुलबुली आवाज दी है अलका याग्निक ने। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का। पर्दे पर इस गीत को खूबसूरती से प्रस्तुत किया माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। तो आइए इस प्यारे से गीत का लुत्फ उठाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में।

संगीतकार एआर रहमान और गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। इस गीत को पर्दे पर माधुरी दीक्षित और प्रभु देवा ने अपनी शानदार प्रस्तुति से यादगार बना दिया। तो आइए सुनते हैं जिंदगी को मुस्कुराते हुए स्वीकार करने वाला और संदेश देने वाला ये शानदार गीत।

आपने ट्यून किया है कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आइए अब पेश करते हैं बॉलीवुड के सबसे यादगार और लोकप्रिय रेन सॉन्ग में से एक, जो वर्ष 1994 में प्रदर्शित फिल्म मोहरा का एक सुपरहिट गीत है। अपने दिलकश धुन और शानदार फिल्मांकन के लिए आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जो उस घड़ी पसंद किया जाता था। इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीत दिया है विजू शाह ने और इसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। पर्दे पर इस गीत को अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने फिल्माया है। आइए सुनते हैं बारिश के फुहारों और मधुर संगीत के इस खूबसूरत संगम का आनंद लेते हैं। सुनिए फिल्म मोहरा का ये प्यारा सा गीत।

इस दिलकश गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। आइए कार्यक्रम सबरस में सबसे पहले सुनते हैं ये भजन, आवाज लखवीर सिंह लखा की।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सबरस। अभी आपने इस कार्यक्रम में सुना ये भजन, आइए सुनते हैं कार्यक्रम में ये गजल। आवाज दिलेर मेहंदी की और समय है कार्यक्रम सबरस में गैर फिल्मी गीत का।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सबरस यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। शाम के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमीनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
4: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में 2 दिन निःशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मॉनसून और मॉनसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवमरला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

FM Wave 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है ग्राम कार्यक्रम ग्राम सभा।

लीजिए श्रोताओं, हाजिर है अर्पणा आपका कार्यक्रम ग्राम सभा लेकर। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा राम राम। और श्रोताओं, आपको बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या क्या लेके आए हैं। तो हमारी जो आज की बात का विषय है वह है मुहर्रम, सादगी और त्याग का पर्व। इसके साथ प्यारे प्यारे लोकगीत भी होंगे और आज के मेहमान से भी आपको मिलवाएंगे। और जो हमारी कृषि चर्चा है, बत्तख पालन भी एक सहायक व्यवसाय है, वो भी करेंगे। और चलते चलते करेंगे श्रृंखला बातें खेती किसानी की। तो ठीक अब से 8 बजे तक आप बने रहिए हमारे साथ। और अपनी बात करने के पहले फिर हम एक छोटी सी बात करते हैं। तो श्रोताओं, जैसा कि बरसात का मौसम आ गया है और इस मौसम में जिस तरह से हमें हमारा ख्याल रखना होता है, उसी तरह से जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनका भी हमें ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। और ये बात हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से अपने जो पशु है उनका ध्यान रखना है। तो बरसात का मौसम आ गया है तो उसके पहले ही शायद हमारे किसान भाइयों ने प्रबंधन कर लिया होगा उनके जो आवास है उसका, क्योंकि सबसे ज्यादा मुख्य बात इसमें जो होती है उनकी आवास व्यवस्था की। क्योंकि बरसात का जब पानी गिरता है तो वो उनके गौशाला में भी गिरने लगता है, तो हमें उसकी टूट फूट की जो मरम्मत है वो करने की आवश्यकता होती है। उसी के साथ यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनकी जो गौशाला है उसमें जबरदस्ती का जो बहुत सा पसारा होता है, यानी कि टूटे फूटे बर्तन या कुछ भी कबाड़ा जो होता है वो ना रखे, उसको थोड़ा खाली रखे। उसके साथ उसमें हवा अच्छे से प्रवेश करे, एकदम से बंद ना हो, क्योंकि इन समय में यदि ज्यादा बारिश होती है तो उस समय में पशुओं को संक्रमक बीमारी होने की संभावना होती है। तो उसकी साफ सफाई और थोड़ा सा उसमें प्रकाश आते रहे, इस तरह की व्यवस्था होना चाहिए। और जब भी ज्यादा बारिश होती है उस समय उसमें से जो जल, जैसे यदि पानी जमा होता है तो उसके लिए व्यवस्थित तरीके से नाली वगैरह बनी होना चाहिए, जिससे कि जैसे ही पानी गिरता है वो जल्दी से निकल जाए। और गौशाला की व्यवस्था ही ऐसी होना चाहिए कि थोड़ा सा ढलान वाला होना चाहिए, ताकि यदि पशु गोमूत्र करता है या गोबर करता है तो उसकी सफाई जल्दी से हो जाए। तो इस तरह से उसकी व्यवस्था इस मौसम में हमें करने की आवश्यकता है। और जो उसकी गौशाला है यदि ज्यादा गीली हो जाती है तो उसको सुखाने के लिए भी हमें व्यवस्था करना जरूरी होता है। और जो उनका भोजन होता है उसको भी, जो चारे की व्यवस्था होती है वो संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए, तो यह भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस तरह से यदि हम हमारे पशुओं का ख्याल रखते हैं तो निश्चित ही हमारे पशु स्वस्थ रहते हैं। और यदि हमारे दुधारू पशु है तो उनका हमें विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि वो बीमार होते हैं तो सीधा सीधा हमारे दूध उत्पादन पे भी प्रभाव पड़ता है, तो हमें उनकी विशेष देखरेख करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो गाभिन हमारी गाय या भैंस होती है उनका भी ध्यान देने की आवश्यकता है, उनका खान पान और समय समय पे सभी पशुओं का टीकाकरण कराने की आवश्यकता होती है। यदि टीकाकरण हो जाता है तो बहुत हद तक के हमारे पशु बीमारी से बचे रहते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो ये हमारी एक छोटी सी बात थी और अब करते हैं अपनी बात। श्रोताओं, आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। मुहर्रम त्याग, समर्पण और अनुसरण का दिन है। यह शहादत का पवित्र दिन है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज से नया वर्ष भी शुरू हो रहा है। पहले महीने से ही मुहर्रम के दिन की शुरुआत होती है। इमाम हुसैन जी की शहादत को याद किया जाता है। इस समय यह अन्याय के खिलाफ डटे रहने और सच्चाई के लिए प्रेरणा देने वाला ऐतिहासिक पर्व है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी अपनी बात और अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: रूठी है बरखा रानी, मेघा तुम काहे करे मनमानी। रामचरण यादव और साथियों की आवाज में अभी सुना आपने ये प्यारा सा लोकगीत। और अब चलते हैं और बात करते हैं आज के मेहमान से।
1: रानीपुर के युवा कृषक अरुण वर्मा से, श्रोताओं इनसे बात करने का हमारा विषय है आधुनिक खेती और आधुनिक खेती में यंत्रों का उपयोग किस तरह से करते हैं। तो अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्राम सभा में। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान भाइयों, मैं अरुण वर्मा आपके बीच अपनी आधुनिक कृषि पर बात रखने जा रहा हूँ।
1: तो अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप खेती करते हैं और खेती के साथ क्या क्या करते हैं और आपका जो गाँव है वो किधर आता है।
2: मैं खेती के साथ साथ जॉब भी करता हूँ। मेरी जॉब MRship मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब है और साथ ही मैं खेती भी करता हूँ जिसमें मैं आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करता हूँ। मेरा गांव ग्राम रानीपुर पड़ता है और तहसील घोरा डूंगरी पड़ती है, वहीं पास में मेरा गांव हीरावाड़ी है।
1: तो जो आपका खेत है वहाँ पर किस तरह की जमीन है और पानी की मुख्य तौर पे कैसी व्यवस्था है।
2: मेरे खेत में काली मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों है। खेत में कुआं और तालाब दोनों की व्यवस्था है। नहर, समय पे नहर का भी पानी मिलता है।
1: तो जल स्तर किस तरह का है जमीन में, मतलब जैसे अभी गर्मी का समय था तो उस समय पानी की क्या समस्या हुई आपको।
2: नहीं, पानी की कोई समस्या नहीं होती है, जल की व्यवस्था अच्छी है एंड जल स्तर अच्छा है। कई गाँव में समस्या होती है लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। जल स्रोत के लिए हमारे पास डैम की व्यवस्था है और वहीं पास में तालाब की व्यवस्था है, इसीलिए जल स्तर अच्छा है।
1: जी, और जैसे हम जल की बात कर रहे हैं और अब बारिश का समय भी लग चुका है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि वर्ष भर के पानी की व्यवस्था करने के लिए हमें बारिश के पानी को सुरक्षित यदि हम रखते हैं तो ये हमारे आगे के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होता है। तो आपने वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के कुछ सोचा है या आपके खेत में किसी तरह की तैयारी है क्या।
2: हमारे खेत में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो नहीं है लेकिन कुएं की व्यवस्था और ड्रेन की सिस्टम है।
1: जी,
2: और हमारे खेत में ऐसी व्यवस्था की गई है, खेत का सारा बारिश का पानी को इकट्ठा करने के लिए खेत के निचले स्तर पर एक गड्ढा बनाया है जिसमें पानी इकट्ठा होता है।
1: जी, तो इससे हमारे खेत का जल स्तर भी अच्छा बढ़ता
2: जी
1: होगा।
2: हाँ, जल स्तर बढ़ जाता है, वही हमें बाद में काम आता है।
1: जी, तो जैसे हम लोग आधुनिक खेती की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जैसे आधुनिक खेती को लेकर यदि कोई बात की जाए तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आधुनिक खेती के आज के समय में क्या फायदे हैं।
2: आधुनिक खेती करने से हमें समय की सबसे ज्यादा बचत होती है, उसी के साथ में हम कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं क्योंकि पुराने स्तर पर अगर खेती करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा और व्यक्ति उसी में उलझा हुआ रहेगा।
1: जी,
2: लेकिन नए यंत्रों के द्वारा खेती करेंगे तो कम समय में और अच्छा काम हो जाएगा।
1: जी, और जैसे हम आधुनिक खेती की तो बात कर रहे हैं पर अनाज की बात करते हम अभी देख रहे हैं आज के समय में कि धीरे धीरे हम लोग मोटे अनाज की ओर आ रहे हैं। और जैसे पहले के समय में कुटकी और सावा ये बहुत लगाया जाता था, पुराने जो मोटे अनाज थे, पर अभी धीरे धीरे ये चीजें कम हो गई थी, गेहूं और इसी पे जोर दिया जा रहा था, चना गेहूं। तो आपको क्या लगता है कि हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है मोटे अनाजों को शामिल करना हमारे भोजन में।
2: सारे अनाजों को बोना बहुत जरूरी है और हमारे शरीर में उनका अपना एक जगह है, और साथ ही साथ पुराने अनाजों को लगाना और उनके बीजों को संग्रहित करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देखा जाता है कि कोदो, कुटकी, ज्वार, इनका अब उत्पादन कम हो गया है और साथ में गेहूं, मक्का, सोयाबीन और चना, इनका उत्पादन की ओर किसान ध्यान देता है। और मोटे अनाजों का भी अपना एक फायदा है कि ये कम समय में और अच्छे उत्पादन के साथ होता है। वहीं खाद की बात करें तो खाद खेतों में ज्यादा उर्वरक रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे खेत की भूमि बंजर और खेत की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है जिससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है।
1: जी, तो जैसे हम लोग आधुनिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं तो आधुनिक खेती में हमारे किसान भाई बहुत हद तक के जैविक की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जैविक क्यों करना जरूरी है।
2: जैविक

0: करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पुरानी नीति से अगर खेती करेंगे जिसमें गोबर की खाद का उपयोग हमें अधिक से अधिक करना चाहिए, केचुए की खाद से हमें अधिक अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए क्योंकि इससे जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है और साथ ही में किसान मित्र कहा जाता है केचुए को,
1: जी
0: तो उनका भी जीवन और उत्पन्न हो जाएगा। और किसान भाइयों, हम अगर जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं
1: जी
0: तो इसमें हमारी भूमि भी अच्छी होती है, आगे तक कई पीढ़ी तक हमें और फायदा देती है एंड उपजाऊ बनती है, और साथ ही साथ इसमें कोई नुकसान भी नहीं है क्योंकि रासायनिक उर्वरक में नुकसान बहुत अधिक होते हैं,
1: जी
0: और इसी से स्वास्थ्य संबंधी हमें अच्छे स्वास्थ्य की ओर जैविक खेती बढ़ाती है।
1: जी और अरुण जी, जैसे कि अब हम तो जैविक खेती की भी बात कर रहे हैं और हम खेती बाड़ी की ही बात कर रहे हैं और इसमें हम यंत्रों की बात करते हैं, तो आपके खेत में जैसे आप खेती करते हैं तो आपने बताया कि आप आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो कौन कौन से यंत्रों का आप उपयोग करते हैं?
0: सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, खेती में सबसे जरूरी यंत्र है ट्रैक्टर की।
1: जी
0: ट्रैक्टर हमें सभी कामों को आसान बनाने के लिए, ढुलाई करने के लिए, जुताई करने के लिए, बुआई करने के लिए, सभी कामों में सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण है यंत्र है कृषि का।
1: जी
0: खेती में ट्रैक्टर के साथ साथ हमें कल्टीवेटर की आवश्यकता होती है जिससे मिट्टी को बखेरने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, और साथ ही में मिट्टी को बारीक भुरभुरा बनाने के लिए रोटोवेटर या ट्रेलर का उपयोग होता है जिससे जमीन और भी बारीक हो जाती है। और साथ में बुआई करने के लिए सबसे जरूरी यंत्र है सीड ड्रिल की, जिससे दाने एक मात्रा में और सीधी लाइन में कतार में उपयोग उतारने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग होता है। कटाई के लिए हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं जिससे खेत की सफाई और कटाई हो जाती है, अनाज की साफ होकर अनाज घर पहुंच जाता है। वहीं थ्रेसर का भी कहीं उपयोग होता है। और किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें तो सिंचाई के लिए हम ड्रिप एलिगेशन या स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं।
1: जी
0: वहीं पुरानी विधि से ज्यादा अधिक मात्रा में अच्छे से पानी की उलाई करने के लिए हम ढकेलवा पानी देते हैं जिससे फसल और अच्छी और स्वस्थ रहती है।
1: जी तो जैसे अरुण जी आपने बताया कि आप आधुनिक तरीके से सिंचाई करते हैं, तो इसमें किस तरह से फायदा होता है आपको?
0: आधुनिक कृषि से समय की बचत हो जाती है, साथ ही
1: जी
0: मैं दूसरी जॉब भी करता हूँ, इसी में मैं समय के साथ साथ सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, सिंचाई में हम स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं क्योंकि स्प्रिंकलर से पानी ज्यादा अधिक होता है ना ज्यादा कम होता है, पानी इससे व्यर्थ भी नहीं बहता है
1: जी
0: जिससे वही पानी हमें दूसरी बार भी उपयोग हो जाता है। स्प्रिंकलर के द्वारा समय पे और कम मात्रा में अच्छा पानी बराबर सब जगह उपयोग होता है।
1: जी आपने जैसे बताया कि पानी पर्याप्त तो हो जाता है, तो जैसे कोई भी फसल में आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं?
0: जी नहीं, हर फसल में स्प्रिंकलर काम नहीं आते हैं, कहीं ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करना पड़ता है, कहीं पर ढकेलवा पानी देना पड़ता है।
1: और जैसे सिंचाई के साथ मुझे एक चीज और याद आती है कि जैसे हमारे बहुत से किसान भाई सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो आपके यहाँ भी इस तरह से पैनल वगैरह आपने लगाए हैं खेती में?
0: जी हाँ, मैंने भी सौर पैनल लगाया हुआ है जिससे बिजली हो या नहीं हो इसकी मुझे चिंता नहीं होती है क्योंकि नए आधुनिक कृषि यंत्रों में सबसे ज्यादा बुआई के टाइम, उसके बाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है बिजली, इससे
1: जी
0: तुरंत उसके बाद पानी की उलाई हो सके। तो किसान भाइयों, मैं अपने खेत में सौर ऊर्जा पैनल का उपयोग करता हूँ जिससे मुझे बिजली की कोई चिंता नहीं होती है, जब मैं चाहूँ तब मैं अपने हिसाब से पानी की उलाई कर सकता हूँ क्योंकि खेतों में बिजली की बहुत समस्या होती है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में,
1: जी
0: और कभी बारिश पानी के कारण कहीं पोल गिर गया या कुछ हो जाता है तो 8 दिन 10 दिन पानी नहीं आता है, या किसी और कारण से बिजली नहीं आती है जिसके कारण से उलाई में हम लेट हो जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचता है। लेकिन सौर ऊर्जा पैनल के कारण आप जब चाहो तब आपकी अपनी इच्छा अनुसार पानी की उलाई कर सकते हैं या बिजली की व्यवस्था बना सकते हैं जिससे समय की बचत हो सकती है।
1: और जैसे अभी आपने जो रबी की फसलें निकाली थी, तो उन फसलों के जो भंडारण है वो किस तरह से किया था आपने?
0: फसलों का भंडारण पहले अच्छे से सुखाया जाता है और गेहूं को कोठी में या गोदाम में भरा जाता है, और उसके बाद जो बचा वाला अनाज है उससे हम बेच देते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि नमी से बचाने के लिए फसल को अच्छा सुखाया जाता है और पैकिंग अच्छी की जाती है। हम अनाज के भंडारण के लिए जहाँ ऐसी जगह अनाज रखते हैं जहाँ धूप का आना जाना अच्छे से हो सके,
1: जी
0: हवा आसानी से पहुंच सके, और
1: जी
0: वहीं बारिश के मौसम की बात की जाए तो ऐसी जगह अनाज रखना चाहिए जहाँ पानी का और नमी पहुंचना नहीं हो पाए
1: जी
0: क्योंकि नमी के कारण हमारा अनाज बहुत जल्दी ही खराब हो सकता है।
1: जी
0: और किसान भाइयों, मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो यही देखा जाएगा कि अधिक बारिश या कम बारिश हो, इस बारिश का अधिक पानी खेत में इकट्ठा ना हो
1: जी
0: इसके लिए मेड़ की व्यवस्था ऐसी की गई है, खेतों में क्यारी बनाई गई है
1: जी
0: जिससे अधिक बारिश हो तो खेत के बाहर पानी हो जाए और कम बारिश हो तो तो उस क्यारी में ही पानी रह जाए, जिससे हमें फसल को कोई आगे तक पानी मिलता रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें खेत की इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरी आवश्यकता है, क्योंकि यदि जल निकासी व्यवस्था या जल संरक्षण की व्यवस्था अच्छी हो तो हमारे खेत भी

0: सुरक्षित रहेगा और जल स्तर भी अच्छा रहेगा। और जैसे हम कृषि यंत्रों की बात कर रहे हैं, तो जैसे कृषि यंत्रों के रख रखाव की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए हमारे जो कृषि प्रबंधन होता है उसमें, तो आप किस तरह से व्यवस्था करते हैं कृषि यंत्रों की?
1: जी हाँ, तो किसान भाइयों, मैं कृषि यंत्रों की बात कर रहा था, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृषि यंत्रों का उपयोग के बाद अच्छे से धो के एंड धूप में सुखा के उसके बाद अच्छे से ऑयल ग्रीसिंग करके को ढक के और अच्छी जगह बिना नमी, जहाँ नमी नहीं हो ऐसी जगह उसको सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे कि उसमें जंक नहीं लगे, साथ ही साथ हमारा यंत्र अच्छा और लंबे समय तक हमें उपयोग दे। वहीं कृषि यंत्र को दूसरी बार दोबारा अगली फसल के लिए यूज करने के लिए मैं बात करना चाहूंगा, तो जब भी हम कृषि यंत्र को अगली बार के लिए यूज करें या उपयोग में लाएं, तो उसे पहले चेक कर लें, क्योंकि रखा रखा यंत्र कभी नट ढीले हो जाते हैं या कोई वायर कट जाता है या ऐसी समस्या आती है कि हमने देखा जाता है कि कोई नट जंक में खराब हो गया हो या उसके कारण क्या है, हमें फिर खेत में दिक्कत हो जाती है। इसी कारण पहले हमें चेक करना चाहिए सारे नट ढीले नहीं हो, उसके कारण पहले सर्विसिंग कर लें, उसके बाद ही उपयोग में।

0: ग्रीसिंग करके को ढक के और अच्छी जगह बिना नमी, जहाँ नमी नहीं हो ऐसी जगह उसको सुरक्षित रखना चाहिए जिससे कि उसमें जंक नहीं लगे, साथ ही साथ हमारा यंत्र अच्छा और लंबे समय तक हमें उपयोग दे।
1: जी
0: वहीं कृषि यंत्र को दूसरी बार दोबारा अगली फसल के लिए यूज करने के लिए मैं बात करना चाहूंगा। तो जब भी हम कृषि यंत्र को अगली बार के लिए यूज करें या उपयोग में लाएं तो उसे पहले चेक कर लें, क्योंकि रखा रखा यंत्र कभी नट ढीले हो जाते हैं या कोई वायर कट जाता है या ऐसी समस्या आती है कि हमने देखा जाता है कि कोई नट जंक में खराब हो गया हो या उसके कारण क्या है हमें फिर खेत में दिक्कत हो जाती है। इसी कारण पहले हमें चेक करना चाहिए सारे नट ढीले नहीं हो, उसके कारण पहले सर्विसिंग कर लें उसके बाद ही उपयोग में ले जाए।
1: बिल्कुल सही कहा अरुण जी आपने कि हमें वायर खास तौर पे देखने की जरूरत है, क्योंकि रखे रखे कई बार चूहे काट देते हैं या कई बार गल भी जाते हैं, और यदि हमने अच्छे से नहीं देखा तो उसमें करंट लगने की संभावना होती है, कोई दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो
0: जी
1: पहले यदि हम हमारे यंत्र को व्यवस्थित तरीके से चेक कर ले और उसके बाद ही उसका उपयोग करें तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ जैसे कि हम उपयोग की बात कर रहे थे, जब भी हम कोई यंत्र का उपयोग करते हैं तो उस समय खुद को लेकर भी कुछ सावधानी रखना होता है, तो किस तरह की सावधानी हमें रखना चाहिए?
0: जी हाँ, बात करें तो सबसे पहली बात, कल्टीवेटर तो बहुत अच्छा यंत्र है, इससे सावधानी बरतनी चाहिए। और
1: जी
0: साथ ही साथ रोटोवेटर या टिलर की बात करें तो इससे ज्यादा सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि
1: जी
0: इसमें ढीले कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए और इससे दूरी बनाते रहना चाहिए। वहीं ट्रैक्टर के साथ है, जिस भी इम्प्लीमेंट के साथ में आपने अटैच किया हो उसके गियर पे ध्यान देना चाहिए। और
1: जी
0: मैं बात करना चाहूंगा थ्रेसर की, तो थ्रेसर का उपयोग करते समय हमें ढीले कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं साथ में किसी रस्सी या छोटे मोटे कपड़े से दूर रहना चाहिए या टाइट कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि थ्रेसर में ढीले कपड़े आपके अंदर भी जा सकते हैं।
1: जी
0: और किसान भाइयों, मैं साथ ही में एक बात कहना चाहूंगा जो हमारी सावधानी के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम माल ढुलाई करी, गेहूं ढुलाई करे या गन्ने की ढुलाई करी, तो कम ही मात्रा में माल भरना चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग के कारण देखा जाता है समस्याएं हो जाती है और कभी ऐसी अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है जिसके कारण हमें कभी जीवन भर उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है।
1: सही कहा आपने कि हमें जितना उसके लिए निश्चित एक वजन जितना हमें हमारे ट्रैक्टर में या हमारे किसी गाड़ी में रखना उतना ही रखना चाहिए। और जैसे कि अब यंत्रों की बात तो हमने कर ली, उसके साथ जैविक की भी आपने हमें बताया, और यदि जैसे फसल चक्र आप यदि अपनाते हैं आपके खेती में तो किस तरह का फायदा होता है और क्यों जरूरी होता है फसल चक्र अपनाना?
0: देखा जाता है किसान भाइयों, अपन अगर एक ही फसल का उत्पादन बार बार लें तो वो फसल का उत्पादन कम हो जाता है। चक्रण करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि एक ही फसल को बार बार बोने से उसका उत्पादन कम हो जाता है, तो हमें दूसरी फसल का भी उपयोग करना चाहिए। जैसे गेहूं के बाद हमें चना बो देना चाहिए या चना की जगह हमें सरसों बो देना चाहिए या किसी और अन्य फसल का उपयोग करना चाहिए। बारिश की फसल में हमें मक्के के साथ में धान का या तिल्ली का उपयोग करना चाहिए, और गर्मी की फसल के लिए हमें मूंग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मूंग की पत्तियों से और चने की पत्तियों से हरी खाद बन जाती है और चने की पत्ती नाइट्रोजन बढ़ाने का अच्छा काम करती है, अच्छा सोर्स होता है। साथ ही में खेत में खाद का अच्छा उपयोग, यानी अगर हम फसल बदल बदल कर लगाते हैं तो हमारी जमीन में सभी प्रकार के तत्वों की पूर्ति आराम से हो जाती है।
1: जी और अरुण जी, हम खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं और अब चलते चलते हमारे सभी श्रोताओं से, और खास तौर पे आप एक युवा कृषक है, तो आप हमारे सभी युवा कृषकों से क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाइयों, हमें खेती करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा जा रहा है हमारा अनाज आज के दौर में देश विदेश में जा रहा है, भारत अनाज को निर्यात कर रहा है। और साथ ही साथ कृषि को महत्व मैं इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि सारी दुनिया को या सभी को कृषि से ही भोजन की प्राप्ति हो पा रही है। और नए युवा कृषक भाइयों से निवेदन है कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए आधुनिक यंत्रों का, आधुनिक विधियों का उपयोग करना चाहिए जिससे समय की बचत हो सके।
1: जी एकदम सही बात कही अरुण जी आपने कि हमें कृषि की ओर ध्यान देने की आवश्यकता, और यूं ही हम हमारे किसान भाइयों को अन्नदाता नहीं कहते, क्योंकि हम सभी को भोजन उपलब्ध हमारे अन्नदाता ही करवाते हैं, और हम हमारे कार्यक्रम ग्राम सभा के माध्यम से हमारे सभी अन्नदाताओं को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आज उनकी वजह से हमारे घरों में भोजन बनता है। और अरुण जी आपने आधुनिक खेती से संबंधित इतनी अच्छी बात कही, निश्चित ही आपसे हमने जो बात की वो हमारे किसान भाइयों को और हमारे युवा कृषकों के लिए देखी होगी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: नमस्कार किसान भाइयों।
1: श्रोताओं, अभी हम आप सुन रहे थे ग्राम रानीपुर हीरावाड़ी के युवा कृषक श्री अरुण वर्मा से की गई बातचीत, और इस बातचीत के बाद चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

रामचरण यादव और साथियों की आवाज में अभी सुना आपने ये लोकगीत। और इस लोकगीत के बाद चलते हैं और करते हैं हमारी आज की कृषि चर्चा। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाई कृषि कार्य के साथ कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन करते हैं, जिससे उन्हें कृषि के साथ साथ अलग से आमदनी होती है। और इसी में अगर हम बात करते हैं बतख पालन की, तो बतख पालन भी हमारे कृषक भाई अच्छी आमदनी के लिए कर सकते हैं, यानी आमदनी का एक बेहतरीन और कम लागत वाला ये सहायक व्यवसाय भी हम इसे कह सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, कम लागत वाला यह व्यवसाय है क्योंकि मुर्गियों की तुलना में बत्तखें ज्यादा अंडे देती है। और यदि मुर्गियों के मुकाबले यदि इनकी सहनशीलता की हम बात करें, तो यह हर मौसम में मजबूत रहती है, यानी बीमारियों का खतरा भी इन्हें कम होता है और ये स्वस्थ भी रहती है। इनके भोजन की अगर हम बात करें, तो मुर्गियों की तुलना में कम खर्च में इनका भोजन जो हम इन्हें दे सकते हैं, क्योंकि तालाबों में रहने वाले जो कीड़े और जलीय पौधे और तालाब के बाहर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हें ये खाकर अपना पेट भर लेती है। तो इससे जो इनका भोजन का खर्च है वो भी कम होता है। बस हमें इनके आवास के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्हें पानी में तैरना जरूरी होता है, ये पानी में तैरती है। तो इनके लिए जो हम इनका जो हम आवास का स्थान देखते हैं, यदि वह स्थान तालाब या पोखर के पास हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि बतखों को पानी में तैरने की सुविधा देना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा इनके शरीर के लिए ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें यह सुविधा इन्हें देना बहुत जरूरी है। और तैरने से जो बत्तखें होती है, इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है और स्वस्थ बत्तख में अंडे देने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये सबसे जरूरी बात होती है कि छोटा सा तो भी हमको तालाब उनके लिए बनाना जरूरी है। यदि इनको आहार हम दे रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इन्हें हमेशा जब हम आहार देते हैं, तो उसे गीला करके ही देना है, क्योंकि सूखा आहार इनके गले में अटकता है। तो इसलिए जब भी हम इन्हें कोई आहार दे, तो उसको पानी से भिगा करके ही हमें देना चाहिए। और इसलिए भोजन जब भी हम देते हैं, तो उसमें उसे जैसे जैसे हम दलिया बना के खाते हैं, वैसे पतला बना करके उन्हें देना चाहिए। उन्हें आहार में यदि हम अनाज की बात करें, तो मक्का, गेहूं का चोकर भी हम दे सकते हैं, चावल की भूसी और छोटी छोटी मछलियां भी हम इनके भोजन में इन्हें दे सकते हैं, जिससे बतख स्वस्थ रहती है। इन्हें जंगली जानवरों से और कुत्तों से भी बचाना होता है। साथ ही जो शेड होते हैं, उसकी भी व्यवस्था मौसम अनुरूप करना जरूरी है, और साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही होता है। विशेष तौर पर बरसात के मौसम में हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय संक्रमण वाले बीमारी भी हो सकती है, तो इस समय ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इनके जो छोटे चूजे होते हैं, उनका भी विशेष व्यवस्था करना होता है। 2 से 3 सप्ताह तक उन्हें गर्म सुरक्षित तापमान वाले जगह पर रखना चाहिए। और बतख 4 से 5 महीने में अंडे देना शुरू कर देती है। तो श्रोताओ, इस तरह से यदि उचित प्रबंधन करके अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की कृषि चर्चा, और चलते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोक भजन।

नागले और साथियों की आवाज में अभी आपने सुना ये लोकगीत, और इसी लोकगीत के साथ संपन्न होता है आज का हमारा कार्यक्रम ग्राम सभा। आज्ञा दीजिए आपकी रेडियो हम सफर अर्पणा को। जय राम जी की, जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, जहां आपके अपने जज्बात, आपकी खुशियां और आपकी शुभकामनाएं सुरीले गीतों के माध्यम से पहुंचती है अपनों तक। आज के कार्यक्रम का पहला संदेश हमें प्राप्त हुआ है अंबेडकर वार्ड मुलताई से। यह संदेश हमें भेजा है योगिता मानेकर जी ने। इनके परिवार के सभी सदस्य के लिए इन्होंने शुभकामनाएं लिखी है, क्योंकि परिवार में हाल ही में एक नई खुशियों की दस्तक आई है और घर आंगन में उत्साह, उल्लास और नई उम्मीदों का माहौल है। ये कहते हैं कि घर में जब कोई नई बहू आती है

तो वह अपने साथ सिर्फ एक नए रिश्ता नहीं लाती, बल्कि खुशियों, अपनत्व और कई उमंगों की सौगात भी लेकर आती है। हमारी कामना है कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियाँ ऐसे ही बनी रहे और ये सिलसिला हमेशा यूं ही बना रहे। तो आइए इन खूबसूरत भावनाओं के साथ सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन का ये बेहद ही लोकप्रिय गीत। यह गीत वर्ष 1994 में प्रदर्शित फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया गया है। इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। गीत के बोल देव कोहली के हैं और साथ ही संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत इनके संदेश के साथ।

आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से आपने ट्यून किया है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और अब समय है आज के अगले संदेश का। यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है शास्त्री वार्ड मुलताई से। संदेश भेजा है पद्माकर सपकाल और कल्पना सपकाल ने। उनके परिवार के और नाम लेना चाहते हैं, उन्होंने और परिवार के नाम लिखे हैं जिनमें सब शामिल है, देवेंद्र सपकाल, मीनाक्षी सपकाल, यश, दीक्षा, यशस्वी और शोभित सपकाल। इन्होंने कहा है, लिखा है कि परिवार में विवाह की खुशियां का माहौल है और इस शुभ अवसर पर परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं इन्होंने अपनी बेटी के लिए प्रेषित की है। परिवार के समस्त परिवारजनों से संदेश इन्होंने लिख भेजा है कि बेटियां परिवार की खुशियों की सबसे सुंदर पहचान होती है। उनकी हंसी, उनकी यादें और उनका अपनापन हमेशा परिवार के दिलों में बसा रहता है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि जीवन के इस नए सफर की शुरुआत पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आने वाला पल खुशियों, प्रेम और सफलता से परिपूर्ण हो, यही इन सभी की कामना है। तो आइए इन खुशियों और उत्सव के रंगों को और खूबसूरत बनाते हैं और सुनते हैं एक शानदार और जोश भरा हुआ गीत जो विवाह और पारिवारिक उत्सव की उमंग को खूबसूरती से बयां करता है। पेश है फिल्म इंग्लिश विंग्लिश का लोकप्रिय गीत। इस गीत को अपनी मधुर आवाजों से सजाया है सुनिधि चौहान ने और साथ ही इनका साथ दिया है स्वानंद किरकिरे ने। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, संगीत निर्देशन अमित त्रिवेदी का। आइए सुनते हैं मुलताई से पद्माकर सपकाल और इनके समस्त परिवार की ओर से सारी शुभकामनाओं के साथ प्यारा सा गीत यशस्वी के लिए।

इस प्यारे से गीत को के साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला संदेश आपको सुनाते हैं। ये संदेश हमें लिख भेजा है मुलताई से। ये कहते हैं कि बेटियां घर की मुस्कान होती है, उनकी हंसी से घर का हर कोना खिल उठता है और उनके सपनों से परिवार की उम्मीदों को नई उड़ान मिलती है। ऐसे ही प्यार दुलार और ढेर सारी शुभ शुभकामनाओं से भरा अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है मुलताई और जबलपुर से। जबलपुर से यह संदेश हमें लिख भेजा है महिमा सपकाल, महेंद्र सपकाल। उनके साथ ही परिवार के सभी शामिल है। परिवार में सदस्य है मनीष सपकाल, रागिनी जितेंद्र, नेहा, खुशी, पदम, अनुज, बानी सपकाल और इनके समस्त साथी और समस्त परिवारगण। यह संदेश परिवार की लाडली एक बच्ची जिनका बर्थडे आने वाला है उस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमें लिख भेजा है। परिवार की ओर से हनी यानी उसका नाम हनी सपकाल है और एक प्यारी सी शायरी के साथ इन्होंने हमें संदेश लिख भेजा है कि तेरी हंसी से घर का हर आंगन मुस्कुराता है, तेरे सपनों से हर कल नया बन जाता है, खुशियों को धूप यूं ही तुझ पर बरसाती रहे और खुशियों की धूप यूं ही तुझ पर बरसती रहे, हर जन्मदिन तेरी जिंदगी में नई खुशियां लाता रहे। महिमा और महेंद्र सपकाल सहित पूरे परिवार की ओर से हनी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी गई है और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। अब हनी जैसी चुलबुली प्यारी और खुश मिजाज बिटिया के लिए हम लेकर आए हैं एक बेहद शानदार और जोश से भरा गीत। आइए सुनते हैं फिल्म बार बार देखो का सुपरहिट गीत। इस गीत को अपनी आवाजों से सजाया है जसलीन रॉयल, हर्षदीप और सिद्धार्थ महादेवन ने। गीत के बोल लिखे हैं आदित्य शर्मा ने, संगीत दिया है जसलीन रॉयल ने। आइए सुनते हैं जबलपुर से हमारे श्रोताओं की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: तुम्हें बचा।
1: कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। श्रोताओं, जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हम इसमें हमारे अपने ही लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं और सबसे बड़ी खुशियां भी होते हैं। जब बात बेटियों की होती है तो वो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि परिवार की मुस्कान, उम्मीद और खुशियों का सबसे प्यारा एहसास होती है। कार्यक्रम में आज का यह स्नेहिल संदेश हमें प्राप्त हुआ है, हमें लिख भेजा है राजेश सोनी जी ने। जो ये खत आया है हमें बेरडी से, इन्होंने अपने प्यारी बेटी के लिए जीवन से जुड़ी एक खूबसूरत सोच हमारे तक साझा की है। जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब अपनों का प्यार और विश्वास साथ हो। बेटियां परिवार की वह ताकत होती हैं जो हर मुश्किल को मुस्कान में बदलना जानती हैं। हमारी यही कामना है कि तुम्हारे जीवन का हर नया दिन नई उम्मीद, नई सफलता और नई खुशियों को लेकर आए। तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, आगे बढ़ती रहो और अपने सपनों को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। इसी खूबसूरत भावनाओं के साथ अब समय है एक ऐसे गीत का जो जिंदगी को खुलकर जीने और हर पल को खूबसूरत बनाने का संदेश देता है। आइए सुनते हैं एयरलिफ्ट का एक प्यारा सा गीत। अपनी मधुर आवाज इस गीत को दी है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं कुमार ने और संगीत दिया है अमाल मलिक ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

इस जोश भरे गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समय है एक ऐसे संदेश का जो समाज को एक सकारात्मक सोच और सुंदर संदेश देने का प्रयास करता है। यह संदेश हमें प्राप्त हुआ है कट्टूपड़ बजरिया रोड छतरपुर बुंदेलखंड से। यह संदेश भेजा है बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती और समस्त रामटोरिया बुंदेलखंड परिवार ने। इनकी ओर से संदेश है कि सबसे पहले इन्होंने नमस्ते सभी लोगों को लिखा है। एक बात जरूर याद रखें कि कोई बोलता है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, बेटी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भाई, बेटी तो बहुत अच्छी होती है। वही घर से घर की जो बेटी आती है वह घर से कुछ घर में लड़कियां आती हैं, कुछ घर में लड़के आते हैं, पर कभी इस चीज को लेकर भेदभाव ना करें। इन्होंने इस संदेश पर जोर दिया है। यह संदेश भेजा है बुंदेलखंड छतरपुर रामटोरिया से। श्रोताओं, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि जो आज के समय में बेटी और बेटियों को लेकर भेदभाव अभी तक होता था, अब उस विचार में बहुत सुधार हुआ है। आज के समय में जो माता-पिता हैं वो बेटों को जितना प्यार देते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने बेटियों को प्यार देते हैं। और आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सच कहा है आपने कि बेटियां घर की खुशियां, संस्कार और सम्मान की एक पहचान होती है। इसी सुंदर संदेश के साथ आइए अब सुनते हैं।

एक प्रेरणादायक और जोश से भरपूर गीत। पेश है फिल्म दंगल का लोकप्रिय गीत धाकड़। इस गीत को अपनी दमदार आवाज से प्रस्तुत किया है रफ्तार ने। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा और धमाकेदार गीत।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज। आइए कार्यक्रम में सुनते हैं ये प्यारी सी धुन। आप गैस कीजिए कि फिल्म जो ये गाना है किस फिल्म का है, किसने गाया है, संगीतकार कौन है और धुन इस गीत को लिखा किसने है।

आइए इस प्यारी सी धुन पर आधारित ये गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है दाग। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़ है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साज और आवाज आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। अगली साज यानी धुन आपको सुनवा रहे हैं। जस्ट गेस कीजिए कि ये कौन से फिल्म का गाना है, किसने गाया है, किसने लिखा है और संगीत निर्देशन किसका है।

आइए सुनते हैं इस धुन पर आधारित ये प्यारा सा गीत। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, संगीत निर्देशन SD बर्मन का, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम सांस और आवाज यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है।

0: 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित

0: कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत

0: और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर

0: ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार है राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार है सचिन देव बर्मन और फिल्म का नाम है बहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की, फिल्म का नाम है भाई भाई।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगल-ए-आज़म।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

बात कहने का मजा आंखों में है और वाकिफ हूँ खूब इश्क के अहतर जेब।

0: कशाप से तू इम्तिहान ले, गुजरूंगा तेरे इश्क
1: इश्क में, गुजरूंगा तेरे इश्क में हर इम्तिहान।

की खैर हो ऐ हुस्न आशना, ऐ हुस्न आशना।

में दो जहां से मैं बेगाना हो गया हूँ, बेगाना हो गया हूँ। गमे दो जहां से मैं बेगाना हो गया, बेगाना हो गया।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, तो आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा।

0: ऐसा के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो बना

इलैयाराजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञानथेसिकन। हालांकि जब इलैयाराजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञानथेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैया राजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैया राजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैया राजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहाँ वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कजू हंदाई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजल गल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजेंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं, उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1986

0: 1992 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

चूंकि इलिया राजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलिया राजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

0: चोर पुलिस।
1: चूंकि इलिया राजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का। इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी तीन संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि ये हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं।

तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणि रत्नम और इलैया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैया राजा ने सबसे पहले मणि रत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणि रत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणि रत्नम का था और ये मणि रत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणि रत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैया राजा और मणि रत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। कार्यक्रम में हम आपको कुछ फरमाइशी संगीत सुनाएंगे, जिसमें सबसे पहली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं बटीड़ा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग की। इन्होंने बहुत ही प्यारा गीत पसंद किया है, आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा गीत।

स्वागत उन श्रोताओं का जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून किया है। श्रोता, आपने ट्यून किया है कार्यक्रम आपके मीत ये गीत आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की नितिन मुकेश की आवाज़ में। इस गीत को हमने लिया है क्रांति मूवी से और इस गीत को पसंद किया है कांकेर संबलपुर से। सुनना चाहते हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके बहुत सारे साथी। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये प्यारा सा गीत फिल्म क्रांति से।

कार्यक्रम आपके मीत ये गीत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत जिसे पसंद किया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। सुनना चाहते हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से और इनका समस्त खड़से परिवार। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कुदरत का ये प्यारा सा गीत।

सुनना चाहते हैं गांव पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री और इनका समस्त परिवार। इन सभी ने पसंद किया है ये प्यारा सा गीत। आवाज़ है मनहर और अनुराधा पौड़वाल की। फिल्म का नाम है अमृत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मीत ये गीत यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद अजीजुल इस्लाम का बांसुरी वादन। इनसे आप सुनने जा रहे हैं राग श्री।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसमें आज आपने सुना बांसुरी वादन उस्ताद अजीजुल इस्लाम का। यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्क्रीन नेटवर्क के विरुद्ध
1: सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की

सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।